संत की निंदा दुख मैं दुख, नानक संत पावे ता उस का पी होए मुख। संत का दुखी सदा अपवित, संत का दुखी किसे का नहीं मित। संत के दुखी को डान लागै, संत के दुखी को साब त्यागै। संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा भिखारी।

को घर बैठा सब कुछ इसका दिया तरवे अचूल जे को कहावे प्र के कलाब ना कहतावे जे को होए भैदातार तिस दिन हा जाने गा वार जिस गुर प्रसाद टूटे हा रोग नानक सोजन सदा अरोग जे मंत्र को थम थम त्यों गुर का शब्द मन है अस्थमन जो पाखाण नाव चढ़ तरै प्राणी गुर चरण लगत निस्तरै ज्यो अंधकार दीपक बरगास गुरदार संदेख मन होए बिगास ज्यो मह उद्यान में मार्ग पावे त्यों साधु संग बल ज्योतिर प्रगटावे त्यों संतन की बाचा तोर नानकी हालो चापूर मन मोर वाहे बरलाई है पुरब लखे का लिखिया पाई है दुख सो प्रभ देवन हार वर त्याग तू तो सज तार जो कुछ करै सोए सुख मान पूला काहे फिरे अजान कौन वस्ता इतरे संग लपट रहो रसलो भी पतंग राम नब फिर दे माहे नानक बसे ती कर जाहे जिस खर को लैं तू आया राम नाम संतन कर पाया तारे अभिमान रेहो मन मोल राम नाम हृदय मैं तोल लाद के संतें संचाल अवरत्य बिख्या जंजाल तन तन कै सब कोय मुखो जल हर दर गै सोय यह वपार विरला वपार नानक दाग सतवल हार चरण साध के तय तय पियो अर्प साध गो अपन जियो साधगी तूर करो इशनान साध बजाइय कुरबान साध शिव बड़ भागे भाइय सा संग हर कीर्तन गाइये अनक बिघन ते साधु राख हर गुण गाए अमृत रस चाख है उठ के संत अंदर आया सर्व सुख नानक तह पाया मृत कौ जी वर्णन हार भूखे कौ देवता धार सर्ब ना जागी दृष्टि माहे पुरम लखे का लैना पाहे सब कृष्ण तिसका ओ करन जोग तिस में दूसर होवा न होगा ज्ञाप जन सदा सदा दिन रैणी सब ते ओच निर्मल हे करने कर कर पर उसका नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया जा कै मन गुर की प्रतीत तिस जने आवे हर प्रभ चेता भगत भगत सुनिए ते लोए जा कै हृदय एक होए सच करनी सटदा की रहत।

मन कै मन हो न राव मन सा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होगा। हरन भरन जाका नेत्र फोत उसका मंत्र न जाने होर अंदरूप मंगल सद जा कै सर्व दुख सुनिए करता कह राज में राजोग में जोगी तब मैं तुम सिर गृहस्थ में भोगी। तय तय भगत सुख पाया नानक तिस पुरख गगन तना पाया जागी लकी मित नाहे सकल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सकल परोई अपने सूत। समत ज्ञान ध्यान जन दे जन दास नाव त्यावै से ते गुण मैं जाको परमा जन्म रह फिर आवै जाए ऊंच नीच के स्थान जय सजना।

0: वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी की फतेह।
1: आसा महला पहला, सुन वड्डा आखै सब कोए, केवड़ वड्डा डेठा होए। कीमत पाए ना कहया जाए, कहने वाले तेरे रहे समाए।

काट काट के अंतर की जानता, अले बुरे की पीर पछानता, चीटी ते कुंचर अस्थूला, सा पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर बछाने, कट कट के पट पट की जान, जब उदकर्ख करा कर तारा, प्रजा तर्त तब देह अपारा, जब अकर्ख करत हो कब हो, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ, जेते बदन सृष्ट सवतारे।

रंचक रेत खेत तन निर्मित दुर्लभ देह सवार तरी खान पान सुंदे सुख पुंचता।

माया रंग बिरंग करत परम मोह के कूप गुबार पर्यो है। एता गब आकाश नमावत बिष्टा अस्त क्रम उधर पर्यो है। दे दिस ताए मां बिख्या को पर तन छीन अज्ञान हरियो है। जोबन बीत जरा रंग ग्रस्यो जमदूतन डान मृत मर्यो है। अनेक जोन संकट नरक पुजंत शासन दुख गर्भ गर्यो है। प्रेम भगत उदरे से नानक कर कृपा संत आप करो है। अनेक जोन संकट नरक पुजंत शासन दुख गर्त गर्यो है। प्रेम भगत उदरे से नानक कर कृपा संत आप करो है।

उदम कर लागे बो पाती, बिचरे अनक शास्त्र बो खटुआ, पसम लगाए तीरथ बो प्रमते, सुखम दे बंदे बो जटुआ, बिन हर भजन सगल दुख पावत, जो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ, पूजा चक्र करत सोम पाका, अनक पांत थाटे कर थटुआ, बिन हर भजन सगल दुख पावत, जो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ, पूजा चक्र करत सोम पाका, अनक

0: असंख नाव असंख थाव गाम गाम असंख लो
1: असंख के सिर पार होए अति नाम अति साला अति ज्ञान की दुंगा
0: अखरें लिखन बोलन बाण अखरें

0: जाए।
1: सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई। रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिनो पाई। जोत सुभाव सोई कर सी हुक्म न करना जाई। मुंदा संतोख शर्म पत झोली ध्यान के ग्रह विभूत। आई पंथी सगल जमाती मांजी तै जागजीत। भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद। संजोग विजोग दो।

चक्र बकर फिरे चतर चक मान ही पुरतीन आदे वनात मूरत थाप्यो सबे जे थाप सर्व विश्वर चियो से अनुभव गणन पंजन हार धर्म ताम सो परम रहत भूत अलख पेख गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुकत दाय काम गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप सूत

0: जरसांगानुपतंग सुरंग सुवारे
1: ओड तुरंग कुरंग से कुदर पान के गौन को जात निवारे
0: पारी पुजान के पूपली बिजनावा सीतरा जात बचारे
1: एते पै तू गा पै पूप के अंत को नागे पै पधारे
0: गीत फिरे सब देश निधान को बाजर।

0: ब्रह्म यशन बिसी सदी पद अंत बस है जम फांस परेंगे।
1: जे नर श्री पद के प्रस है पग दे नर फेर ना दे तरेंगे।
0: कहां पे हो जो दोलू चन मुद के

0: बचाओ सुतंते पाओ
1: सेवा से कमारे तारिये झुनझुन चंद्र हमारे मारिये
0: फाते मुझे बड़े मन काल का त्रास निवरिये
1: हो जो सदा हमारे पचासी तो जो करियो रक्षा
0: राख

सेवकती संतोखे जिन सचो सच त्याया उन्नी मंदे पैर न रखे उन कर सुकर धर्म कमाया उन्नी दुनिया तोड़े बंदना न पानी थोड़ा खाया तू बख्शिश अगला नित देवे चढ़े सुवाया वडिया।